ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

सदा उसकी ही मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

गिंद अपनी मैं दिती ये गवाए एक बारी मिले सजना महला ते माड़िया सब नू विसार के सब नू विसार के सब कुछ वन

0: पाया क्या? तब तो मैत्रेयी गार्गी अनेकों नारियों को थी सम्मानित व बराबरी का दर्जा हासिल। समय की धूल पड़ते पड़ते कहां गई वह बराबरी, कहां गया वह सम्मान, कहां गई वह इज्जत, गरिमा, मान, सम्मान। कब पूज्या से भोग्या बन गई पता ही नहीं चला, और अब फैशन की गुड़िया बनाकर रख दिया, ऐसा चरित्र बनाकर परोसा बाजार की आधुनिकता में इन विज्ञापनों फिल्मी पत्रिकाओं ने, कितना दिखाऊ और बदन उघाड़ू हो सके उतना बना दिया जाए। छी, घिन आती है ऐसी कुत्सित सोच से भी। संस्कृति, मान, मर्यादा तो कब के पीछे छूट गए इस आधुनिकता के बाजार में। सोच से परे हो गया कि उत्थान है या पतन। समानता का जामा पहनाकर शोषण, दोहरा चरित्र है समाज का। बेटियों को जलील होते, उनकी अस्मिता पर घात होते देख मन नहीं तड़प जाता तुम्हारा? मां हूं, सोचती हूं कहां छुपा लूं इन नन्ही बेटियों को, कि इन दरिंदों, कामी, लोभी लंपटों की बुरी नजर ना पड़े। मन भर आया, खूब सोचा, खूब सोचा, और देखो शाम तुम याद आए, शाम तुम याद आए। तुम ही करो कुछ कान्हा, सब कुछ वैसा दिखे जैसा पुरातन काल में था, और देखो सुझाया रास्ता उसी परम पिता ने, और कहा तेरे सामने छोड़े सभी विकल्प मेरी बच्ची। मैं चुप, पहेलिया मत बुझाएं सर्वशक्तिमान, मैं परेशान हूं। वो बोले क्या नहीं दिया मैंने तुम सबको, तुम सब नारियों को, मेधा दी, शक्ति दी, भक्ति दी, बल दिया, विद्या दी, तुम बनो ऐसी कि बुद्धि से पछाड़ दो सबको। तुम बनो ऐसी पहलवान कि देकर धोबी पछाड़, कर दो चारों खाने चित पशुत्व के गुणों वाले नराधमों को। बुद्धि पर पड़े पर्दे छटने लगे, बुद्धि पर पड़े पर्दे छटने लगे। हाँ हाँ, शक्ति है हम में, रण हो तो रणचंडी बनकर, गृह हो तो गृह स्वामिनी बनकर। अरे देखो स्वामिनी हूं मैं, स्वामिनी है हम। अपने कर्म के मार्ग को थोड़ा और प्रशस्त करती हूं, अपना सोया ज्ञान शक्ति पहचान कर पूरी शक्ति से जुट जाती हूं प्राप्य को समेटने में। हां, मैं ध्वस्त आत्मविश्वास को पुनः जगाकर समाज को, उनकी ललनाओं को, नाइंसाफियों का डटकर सामना करना, कुसंस्कारों से लड़ना, पूरी शक्ति से जूझना, और बुराई पर ना झुकना, कलम पकड़ना, कलम पकड़ने के साथ साथ मजबूती से कलाई को कठोर बनाना। सब सिखाऊंगी, निर्बलता छोड़ो मेरी बच्चियों, निर्बलता छोड़ो। नारी हूं, मां हूं ना, दो नहीं चार चार हाथों से आत्मसम्मान व अस्मिता को संभालना सिखाऊंगी। पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं, फरेबी, नरपिशाचों, दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सब सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब सब सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: अंबाला तो बाद हूं असि थानू फिरोजपुर लेके चलने, फिरोजपुर दे विच साडे शायर रहिंदे ने कमलदास जी। कमलदास जी बड़ी धीमी सुर दे विच रह के अपनी रचना पेश करदे ने, श्रोते उन्हां नू प्यार भी दिंदे ने, ते इस बार फिर वो साडे सद्दे दे उत्ते हाजिर हो रहे ने। आस करदे आ पहलां वांग ही उन्हां नू श्रोते साडे प्यार देणगे। कमलदास शर्मा जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है जी।
2: लिखे है मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

ने बड़े यत्न से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

0: रुतबा कायम होगा तेरा, दुश्मन थोड़ा मैं यारी रख। अगला शेर है जी, खाली ना हो जेबें तेरी, खाली ना हो जेबें तेरी, फितरत तू कारोबारी रख। खाली ना हो जेबें तेरी, फितरत तू कारोबारी रख। शेर है जी, सीरत को कब देखे कोई, सीरत को कब देखे कोई, सूरत पे तू फनकारी रख। सीरत को कब देखे कोई, सूरत पे तू फनकारी रख। अपना काम निकलवाने को, अपना काम निकलवाने को, दो बंदे तो दरबारी रख। अपना काम निकलवाने को, दो बंदे तो दरबारी रख। अगला शेर है जी, दिल्ली की दरबारी छोड़ो, दिल्ली की दरबारी छोड़ो, गांव की नंबरदारी रख। दिल्ली की दरबारी छोड़ो, गांव की नंबरदारी रख। ले बैठेगा सादा पनिए, ले बैठेगा सादा पनिए, खुद में हरदम अय्यारी रख। ले बैठेगा सादा पनिए, खुद में हरदम अय्यारी रख। दिल शायर सा रखता तो, दिल शायर सा रखता तो, शब्दों की फनकारी रख। दिल शायर सा रखता तो, शब्दों की फनकारी रख। सुर्खी में गर रहना है तो, सुर्खी में गर रहना है तो, किस्से को तू अखबारी रख। सुर्खी में गर रहना है तो, किस्से को तू अखबारी रख। नेकी करके दामन भर ले, नेकी करके दामन भर ले, जाने की बस तैयारी रख, जाने की बस तैयारी रख। शुक्रिया, आदाब।
1: प्यारे श्रोतियों, पंजाब दे विच इक एहो जिहा स्थान है जिथे सतलुज ते ब्यास दरिया जिहड़े आ ओह इकट्ठे हुंदे ने, उहनां दा संगम हुंदा है। उस थां दा नां है हरि के पत्तन। हरि के पत्तन तों जदों असीं मोगा वल नूं मखू रोड ते जाने आ, तां मखू लंघ के अगे पिंड आउंदा है पीर मुहम्मद। पीर मुहम्मद दे विच बसदा है साडा शायर बीर सिंह बीरा। वीर सिंह बीरा जी साडी काम महफिल दे विच पहली बारी आ रहे ने, उहनां दा काम महफिल दे विच निघा स्वागत है। वीर सिंह वीरा जी, जी आयां नूं।
2: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਡਾਵੇ। ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਡਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪੱਖੀਆਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾਵੇ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਪੱਖੀਆਂ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਝਾਲਰਾਂ ਲਾਵੇ। ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਤੰਦ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਪੂਣੀ। ਰਹੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਘੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂਣੀ। ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਤੰਦ ਪਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਪੂਣੀ। ਰਹੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਘੜਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂਣੀ। ਤੰਮੀ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਚਾਟੀ ਚ ਪਾਏ ਮਧਾਣੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਲਵੇਰੀ, ਹੋਏ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਤੰਮੀ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਕੌਣ ਚਾਟੀ ਚ ਪਾਏ ਮਧਾਣੀ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਲਵੇਰੀ, ਹੋਏ ਪੈਕਿੰਗ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦਹੀਂ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਖਾਵੇ।

जिंदगी का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी एक

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन

जिस दिन चुप तू हो जाएगा, इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी।

0: पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपने क्लास च पिछे वाली कतार च ना हो, अगली कतार च रहे। सातवीं अठवीं तक यही चलता रहा, खेडा च भी ठीक सीगा, खेड कूद भी ठीक
1: हाँ
0: लेंदे सी। जिहड़ी
1: जी
0: गल
1: ठीक
0: मैं आखी कि अठवीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों नू बड़ा हवा बनाता, साढ़े टाइम च अठवीं बोर्ड की होंगी
1: है
0: सी,
1: जी अठवीं बोर्ड की। हाँ
0: कहते
1: जी
0: जी बोर्ड का पेपर है तो यदा चंगा तुम्हें करना ही करना, इससे ज़्यादा
1: हाँ
0: कोई वो है ही नहीं, यदा हल ही नहीं है।
1: जी हाँ
0: अठवीं च मेहनत की उदों ही गल्ला कही गया कि जी अठवीं पास कर लो फिर तुम लैके जावे कितने, असं भी नाल करा,
1: वाह जी
0: हो
1: वाह
0: गई पास हो गई अठवीं संभव।
1: ठीक है जी।
0: नौवीं, अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग नहीं, न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो, बुक्स वगैरह जीके की बुक्स है या होर कोई कंप्लीट
1: अच्छा
0: लिटरेचर की
1: अच्छा
0: बुक्स
1: जी
0: है। ये हमेशा आदत साढ़े घर से कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी, पेपर साढ़े को तीन लैंग्वेज के आते
1: ये
0: आते
1: प्लस
0: सी।
1: पॉइंट्स
0: ये प्लस पॉइंट,
1: बिल्कुल।
0: ये ग्रूमिंग की जी मैं गल आख रहा
1: हाँ जी हाँ
0: सी कि
1: जी ठीक है
0: तिन्ने तिन्ने लैंग्वेज के पेपर साढ़े घर से आते सी,
1: जी जी
0: हिंदी
1: जी
0: पंजाबी इंग्लिश तीन शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते सी। ते फिर 9th 10th होया तो बायो च इंटरेस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के देख लेंगे। 10th दे विच जो क्लियर होया तो आई हैड प्रिपेयर्ड माई माइंड कि बायो लैनी है कि डॉक्टर जड़ा है बनना है, किसी ने थोपिया नहीं,
1: अच्छा अच्छा
0: सपना
1: ठीक है ठीक
0: पेरेंट्स
1: है।
0: का सीगा बट उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है, उदों तक माइंड
1: आप
0: बन
1: भी
0: गया
1: उसी सोच आपने
0: बिल्कुल
1: इन्हों अपना सपना बना लिया। ठीक
0: बिल्कुल कि बनना है, मेडिकल ले
1: जी
0: ली,
1: जी जी
0: नाल थोड़ा मैथ से इंटरेस्ट सी, नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली
1: और क्या
0: उदों।
1: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड़िया कोई नहीं, दोनों भी नाल ही रखिया।
0: उन्होंने दिनों जो जेडे मेरे फ्रेंड से वो एनडीए का पेपर देने जा रहे थे,
1: हाँ जी
0: मैं
1: हाँ
0: कहा
1: जी
0: कि चलो पता नहीं डॉक्टर बनागे नहीं बनागे,
1: ठीक
0: पेपर
1: ठीक हाँ जी हाँ
0: दे चुके थे एनडीए का पेपर भी देने चले गए।
1: जी
0: रब दे मेहर से दोवे जड़े हैं, वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, डॉक्टरी का क्लियर हो गया
1: क्या
0: उस
1: बात
0: वेले। मतलब चीज़ें वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुम दोवे
1: है,
0: एक साथ
1: सही
0: टेकअप
1: ट्रैक पे
0: करो,
1: जा रहे थे तुसी।
0: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं की, वो सामने ये ऑप्शन होंगे ने बैंकिंग
1: जी जी
0: के,
1: जी
0: जिस किसी लगता है कि बैंकिंग से जाना है वो कमर्स के थ्रू अपनी तैयारी उस तरह की कर सकता है, किसी लगता है सीए बनना है, मैं
1: सारा
0: किसी लगता है
1: बिल्कुल
0: इंजीनियरिंग करना है, दैट इज द स्टेज जो 9th 10th के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, प्लस वन
1: बिल्कुल
0: के टेक ऑफ करते हो। उस तो
1: जी
0: बाद
1: जी
0: भावें सीए बनो, इंजीनियर बनो,
1: हाँ
0: टीचर
1: जी हाँ जी
0: बनो, अपने डॉक्टर बनो, आर्मी से जाओ, पुलिस से जाओ, वो ताड़ी जड़ी है उस वेले ताड़ा डिसीजन लेना जरूरी होता है। तो दोनों जदों मेरे क्लियर हो गए तो बेटर हुआ कि चलो ठीक सपना वो जाना सेगा
1: हाँ जी हाँ
0: मेडिकल
1: जी
0: दे, मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया
1: बिल्कुल
0: पहले
1: बिल्कुल
0: अटैम्प्ट। और सिविल सर्विस इस करके बनया क्योंकि जिम्मे मैं दसिया से कि जीके शुरू तो अच्छी सी,
1: हाँ जी
0: पेपर रीडिंग बहुत चंगी एक आदत जो बच्चे च पै सकती होवे।
1: हाँ जी
0: और मैं अपना जो सिविल सर्विस का करियर, मैं टोटली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में सिविल सर्विस की तैयारी की थी, वो जड़ा बेस सेगा थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा बचपन तो
1: शुरू
0: ही
1: तो बनया
0: तैयार
1: है
0: हो
1: जी
0: चुकिया सेगा।
1: बिल्कुल
0: एंड उस आदत के कारण जड़ा से सिविल सर्विस शानदार डिसीजन होया कि चलो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बेस
1: जी जी
0: चंगा
1: जी
0: बनया
1: बिल्कुल
0: होया सेगा।
1: ठीक है
0: तो किसी बच्चे ने अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो एक बहुत ही बेसिक स्टेप जड़ा प्रिलिमिनरी स्टेप मैं आखाँगा कि पेपर रीडिंग की आदत जो बाद च भी बन जाए, इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज उदों भी बन जाए, तो ये बहुत ही चंगी आदत है।
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: आस
1: जी
0: पास की अपनी सराउंडिंग्स नाल, देश दुनिया की खबरों तो भी तुसी रहिंदे हो,
1: अपडेटेड रहना जी
0: अपडेटेड रहिंदे हो, तुसी अपने शहर की खबरों तो भी अपडेटेड रहिंदे हो, तुहाडे
1: जी
0: शहर च
1: जी
0: की हो रहा है, तुहाडी कंट्री च की हो रहा है, दुनिया च की हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: एंड सिविल सर्विस जाओ या ना जाओ बट एक इन्फॉर्म सिटीजन जरा तुसी उदे विच बन सकते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी वो पहली शर्त है, वो तो चाहिए
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल
1: तुसी उधर सिविल सर्विस दे विच भी एन वधिया शाइनिंग कलर्स दे नाल उधर अपीयर होए ते मुड़ के हुण तुसी बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेवावां दसूहा दे विच निभा रहे हो, ते इसे करियर तो डा के बहुत दूर तक जाण वाला है। ते ये जिहड़े बच्चे आ साडे भविख आ देश दा, तुसी एक उहनां दे लई रोल मॉडल हो। जदों तुहानूं मिलदे आ बच्चे भी तुहानूं मिलदे होणगे स्कूलां च तुसी जाते हो जां कई वारी बच्चे तुहाडे कोल आउंदे ने, किस तरह दा तुहानूं ओवरऑल एक उहनां दा प्रभाव तुहाडे उत्ते पैंदा है कि ये जिहड़ी पीढ़ी आ ये किन्नी क जागरूक आ, किन्ना क बच्चा जिहड़ा है किस लैवल ते खड़ा है लग जांदा पता कि ये जिहड़े मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्चे आ स्कूल गोइंग बच्चे आ इन्हां दा कैलिबर कितने क खड़ा है अज दे देखा जावे ओवरऑल सिनेरियो जनरल।
0: मैनू नहीं पता, मुझे इस तरह लगता है कि इंडिया के जीन्स कुछ इस तरह की गल है, जेनेटिक मटीरियल अपने देश का इस तरह का है कि बच्चे
1: जी
0: जड़े है इन्ने ज़्यादा टैलेंटेड ने, नवी जड़ी पनीरी आप कहें
1: हाँ
0: नवी
1: जी हाँ जी
0: जनरेशन जी आ रही
1: हाँ
0: है
1: जी हाँ
0: वो
1: जी
0: इन्नी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने देख के सानू लगता है कि उस उम्र से असी कुछ भी नहीं सके इन्होंने सामने, जो
1: क्या
0: असी
1: बात
0: इफ यू कैन ट्रेवल बैक इन टाइम तो उन्होंने।